आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द नाइट शिफ्ट ऑल योर फेवरेट म्यूजिक बिग 106.2

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग साबित के साथ ब्रेक।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: विभूति और रानी, तू परांदे नू संभाल लियो, इस अक्टूबर के महीने को भी संभाल, अपने आप को, अपने दिल को संभाल, बिकॉज देयर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग अप. नहीं, चीजें नई नहीं है, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, यू नो, प्लेसेस आउट हियर, बट री ओपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: और इसी बात पे मैंने कल एक पोल सवाल आपसे किया था कि विच ऑफ दीज आर यू मोस्ट वेटिंग फॉर इस हफ्ते में, इन दिस वीक ऑफ अक्टूबर. देर आर थ्री थिंग्स दैट आर रीओपनिंग. फर्स्ट इज दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स, जो कि खुलने वाला है कल, यानी कि 7th. मिरेकल गार्डन गोइंग टू ओपन ऑन द 8th, एंड ओवर द वीकेंड देयर इज अ राइप मार्केट दैट्स आल्सो गोइंग टू मेक अ कमबैक. सो 66% ऑफ द वोट्स वर गिवन टू दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स. अमेजिंग, इतने सारे लोग, सो मेनी वोट्स for Dubai Parks and Resorts, and people are really waiting for that, you know, kya kehte hain, marquee landmark here in the UAE. There's so much happening this week, so much happening next week. Like we said, October is the month of the comebacks. It is the comeback every day in the morning of me, Sid, from 7 to 11. This is a show that gets you up and running. Of course, every day in the morning, the first thing we do is the early morning request. Our kaun sa wo gana hai jo aapki batteries recharge karta hai, like this one. What song is top of your playlist these days? Let me know. Request for your favorite songs. But for just 1 hour till 7 AM, नहीं सॉरी टिल 8 AM, व्हाट्सएप करो 054-309-1062 पर.
2: प्रेम भाई,
3: अरे गिरा तो.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग, 7:26 ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह। 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। ह्यूमिडिटी पता है कितनी? 84% ह्यूमिडिटी। चांस ही नहीं है कि आप विंडोज को रोल डाउन कर पाए। विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 8 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 36, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है Sid on the Big Breakfast only on Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: 2116 पर आपको ट्रैफिक मिलेगा. देन देयर 66 दुबई अलेन रोड पर एज यू क्रॉस जफलिया यू विल फाइंड बिट ऑफ अल जदाफ यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन आउट देयर. दुबई क्रीक के आसपास देयर इज ट्रैफिक. मैदान स्ट्रीट इज गेटिंग अ बिट कंजेस्टेड. एंड 44 पे एज ऑलवेज यू विल फाइंड 5-6 मिनट की देर अराउंड रसल खोर.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:09।
1: Bollywood.

0: It is the last and final quarter of 2026. लेकिन if you're one of those really planned people जो कि मतलब अच्छी खासी 6-7 महीने की planning के साथ अपनी holidays को plan करते हैं, then I've got news for you.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: एक होती है छुट्टी, दूसरा होता है वेकेशन. या सो ये 2026 के तो छुट्टी वेकेशन के बाद हम लोग काफी कर चुके हैं, लेकिन 2027 अगले साल इन मार्च देयर इज अ ह्यूज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कमिंग अप. यानी कि 9-10 दिन का एक बड़ा सा वेकेशन आप ले सकते हो इफ यू जस्ट टेक वन डे ऑफ योर एनुअल लीव. एक दिन एनुअल लीव का यूज करके कैसे, हाउ कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू अ 9-day मिनी वेकेशन, दिस इज हाउ यू कैन डू इट. सो मंडे 8th ऑफ मार्च इज व्हेन द ईद अल फित्र की छुट्टियां आर स्टार्टिंग. सो दैट मींस के यू कैन ऑल्सो सेफली एड 6th and 7th, 2-8 यानी कि सैटरडे संडे, एंड देन 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक थर्सडे तक ये चलने वाली है 4 दिन की छुट्टियां. एंड देन इफ यू जस्ट टेक द फ्राइडे ऑफ विच इज द 12th of March, क्या हो गया, द नतीजा इज दैट यू कैन टेक अ नाइस 9 days का बड़ा लंबा चौड़ा वेकेशन. सो मार्च 6th से लेकर 13th तक, विच इज अ सैटरडे, 14th को भी ऐड कर लो उसके अंदर, सो 14th of March यू कैन टेक अ नाइस वेल डिजर्व लॉन्ग वेकेशन. सो या दिस इज लाइक प्योरली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट टेल एनीबडी. एकता कपूर टीवीएफ अनलाइकली कॉम्बो, द फिल्म डिड नॉट डू वेल एट ऑल. इज कॉल्ड द वन. Only thing that did well is the music and this song, Thumak Thumak, coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: Sanju Baba, Sanjay Dutt has just had a Maushichi moment.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Look, I think Jackie Shroff ke sare kaam ko, sare content ko ek saath dekha jaye, the most successful piece of content is Maushi. Remember that really viral YouTube video. Jab bhi, and I'm feeling a bit low na, jab life mein aisa ho raha to ki bhai kuch dhang se kaam aage nahi badh raha hai, to main wo video laga leta hu, and then I mind kar mind fresh ho jata hai mera. But yeah, mudde ki baat pe aa jate hain. Sanju Baba ka kya connection hai with Maushi? He's had his own Maushichi moment, because here's what has happened over the past couple of days. So over the weekend unka ek episode aaya, Shekhar Suman wale show mein he went as a guest, and he then said some things that he's feeling quite guilty about or sorry for, because unki jam ke, you know, criticism hua, and people are like, aap kaise keh sakte ho that, you know, there's no peace in India and all of that. So that's not the funny part. The funny part is that he has now come online and publicly apologized for what he said, and the apology, according to me, it sounds really funny. Yaar. So this is what it sounds like.
2: सोशल मीडिया पर कई लोगों ने हाल में शेखर सुमन के शो में मेरे द्वारा कही गई कुछ बातों को लेकर मुझसे संपर्क किया. कुछ लोगों ने कहा कि वो मेरे बातों से हैरान है, वहीं कई लोगों ने उन बातों से कड़ी असहमति भी जताई.
0: असहमति थी.
2: मैं उनकी भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ और इस बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ. शो में मैंने जो कुछ भी कहा वो एक स्क्रिप्टेड सेगमेंट का हिस्सा था, जैसे कि अक्सर इस तरह के टीवी शोज में होता है. हम एक स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय कर रहे थे. उसी दौरान कही गई बातें उसी परफॉर्मेंस और उसके कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा थी. वो किसी भी तरह से मेरे व्यक्तिगत विचार, मेरी सोच या मेरी भावनाएं नहीं. सभी दोस्तों और शुभ चिंतकों के विश्वास और स्नेह के बहुत कदर करता हूँ.
0: व्यक्तिगत शुभ चिंतकों के यार, मतलब हाँ, वो शो तो स्क्रिप्टेड था, लेकिन योर अपॉलॉजी नोट डजंट हैव टू बी सो स्क्रिप्टेड दैट यू डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स. बट या संजू बाबा, बिग फैन. जो कहा आपने नहीं कहना कहना चाहिए था, बट या आगे देखते हैं कि क्या होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी? शुड इट बी हैव बीन अ कंट्रोवर्सी इन द फर्स्ट प्लेस? लेट्स डू अ पोल क्वेश्चन ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:06।
1: बॉलीवुड।

0: क्या बात है यार,
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी है भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: मेरे आज के क्लूज सुनकर अगर आप समझ गए कि किसका बर्थडे है, देन यू गो टू व्हाट्सएप मी 0543091062। इनकी लाइफ स्टोरी इज नो लेस देन अ रियली ड्रामेटिक बॉलीवुड फिल्म।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: सो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम ये फेल हो गए एंड देन एट वन पॉइंट इवन रन अवे फ्रॉम होम विद 50 रुपीज INR इन हिज पॉकेट। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगे बट देन इवेंचुअली ही डिड जॉइन द NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एंट्रेंस एग्जाम ही फोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। 1986 में ही टॉप्ड इट एंड देन ही पास्ड आउट इन 89 अलोंगसाइड यू नो पीपल लाइक तिग्मांशु धूलिया। डिड नॉट गेट टू मच ऑफ वर्क बट देन ही डिड द मोस्ट आइकॉनिक मोस्ट मेमोरेबल रोल इन रीसेंट टाइम्स और this is how he sounded, very bad at spelling.
2: Still I am at silence, HIV-MRF, ma, YES, no.
0: And DDLJ Diwali, ye kiski awaaz hai? Agar aapko actor ka naam pata hai, to WhatsApp it 0543091062 par. Sanjay Sharma is the wrong answer, Hemant, so you can, you know, correct your answer and send it back to me. But then the most dramatic story in his life happened kuch saal pehle. When after the loss of his father, he was totally broken. He quit acting. Rishikesh chale gaye. He started working at a local dhaba, जहाँ पर आमलेट बनाने और कप धोने का काम करते थे। 150 रुपए दिन का इनको मिल रहा था। When customers of course would recognize him कि आप तो वही हैं। तो वो झूठ बोलते थे कि नहीं मैं actually वो duplicate हूँ And then the director of that franchise actually tracked him down eventually and convinced him कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हो। And there's a cricket connection also to him. ये इनकी acting की जब now चल नहीं रही थी तो then cricket came to his rescue. There was this character called Apple Singh on ESPN Star Sports that he actually played and then started to be recognized by the audience. तो किसकी बात मैं कर रहा हूँ? Very interesting life story. Very interesting, very talented. One of the most talented actors that we have. So उनका आज birthday 6th of October. In case you figure it out, last chance for you to get your WhatsApp in 0543091062 पर correct answer space your name to win 2 open movie tickets.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Level. In both directions going towards and away from Dubai Frame, Sheikh Rashid Street पर आपको ट्रैफिक मिलेगा D78, उदमीता करामा पर तो आप एक्सपेक्ट करते ही हैं 4-5 मिनट की देर. Today is no different. Business Bay मेट्रो स्टेशन का कुछ करना पड़ेगा यार, इसकी आती जाती सड़कें बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहती हैं. एंड देन देर इज रिबाद स्ट्रीट एज टेक दैट एग्जिट फ्रॉम सिटी सेंटर मिर्दिफ. दिस इज D83 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑल द वे टू फेस्टिवल सिटी यू विल फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक. 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा मिर्दिफ के आसपास. तो इज उल्टी दिशा का ट्रैफिक ऑल्सो हेडिंग नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स सिटी सेंटर मिर्दिफ एंड अ बिट टुवर्ड्स एतिहाद मॉल ऑल्सो यू विल फाइंड 5-6 मिनट की देर.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: I don't know about you, लेकिन इस गाने को सुनकर मुझे वो 90s, late 90s के टीवी शोज याद आते हैं, वो दास्तान परिवर्तन टाइप का.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: देखते हैं यार क्या होता है. Of course, that is the title track of ये प्रेम मोल लिया. What a name. It has to belong to the Rashtri Productions. That is Suraj Barjatya's latest film starring Ayushman Khurana as Prem, not as Salman Khan. Rostak. But चलो हम लोग I'm going to be taking your leave now and I'll join you tomorrow morning. लेकिन याद रहे, you can now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from just 1999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T's and C's apply. मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल सुबह on a Wednesday morning sharp at 7. This is the show that recharges your batteries. It's called The Big Breakfast. In the meanwhile, follow me on socials. I'm Sid Seth, SIDSETH, and of course 106.2 Big FM. That's our Insta handle. तो फॉलो करते ही होंगे, नहीं करते तो अब कर लीजिए. फॉर ऑल द वंडरफुल बिहाइंड द सीन्स एक्शन, सम वेरी अमेजिंग कॉन्टेस्ट फॉर यू टू विन एंड सम पोल क्वेश्चंस फॉर यू टू टेक पार्ट इन एज वेल. सो आई विल सी यू टुमारो. टिल देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर ट्यूसडे. बाय बाय.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood, The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Big 106.2. That's my song.

डिजाइन तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटाएगा?
2: यही 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2, बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. बड़ा लेजी डे और ये लेजी डिश जो है ना हर बार बनती है जब भी कजन्स नाइट आउट होता है, नाइट स्टे होता है. रात के 2 बजे अगर किचन से आवाज आए और खानदान आपको बोल रहा है क्या कर रहे हैं रात के 2-3 बजे ये लोग किचन में, हम नूडल्स बनाते हैं यार. हमारा ये जो इंस्टेंट नूडल है ना, ये हमारा इंस्टेंट गो टू मील है जब भी कुछ नहीं मिलता है या फिर हमें फ़न करना होता है. एंड अगर आप याद करो यार, आपके सारे फ़न टाइम्स में फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, नाइट स्टेज पर, ये नूडल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा पाई जाती है, हमारी मेमोरी में हमेशा रहती है. किसी से पूछ लो कि आप सबसे बेस्ट क्या बनाते हो, दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ मेकिंग इंस्टेंट नूडल्स. दे कॉल इट अ रेसिपी एंड मैं भी उसको रेसिपी में करूँगी क्वालिफाई. लेकिन यू टेल मी कॉल करके टोल फ्री नंबर पर 800-1062 व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ नूडल्स एंड हैप्पी नेशनल नूडल्स डे टू यू. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.
3: जब चाहे तब

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यार नहीं नो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता आमा हसला A1 लाइफस्टाइल A1 आई मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ
1: हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम
2: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में
3: Yeah.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800 Alfred 24/7. Listen to her every day.
3: Mugembo, khush hua.
4: Mr. Anoop, hi, good evening.
5: Good evening, ma'am. Good evening. Kaise hain?
4: Main theek hu sir. Aap kaise ho?
5: Main badhiya, bahut badhiya.
4: Name three things that are yellow in color.
5: Banana.
4: Aur things.
5: Orange. And
4: orange is yellow in color. बहुत बढ़िया अनूप साहब, तालियां मेरी तरफ से। Orange is yellow in color. Very nice. Three things.
5: Orange के अंदर के part.
4: Orange के अंदर के part भी सर orange ही होते हैं, वो येल्लो नहीं होते हैं। आप कहाँ से ये बासी सामान खरीद रहे हो? अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे। तीन ऐसी चीजें जो आप करते हैं जिससे बीवी बहुत गुस्सा होती है आप पे।
5: मोबाइल टॉयलेट में लेके जाना, लंबी बात करना, ज्यादा वीकेंड का काम करना।
4: लंबी बातें करते किससे हो बाथरूम में जाके?
5: बाथरूम में नहीं, मोबाइल, बाथरूम में जाके स्क्रॉलिंग करता हूँ।
4: हाँ, तो लंबी बातें किससे कर रहे हो आजकल?
5: घर वालों के साथ, इंडिया में वगैरह।
4: घर वाले ही है ना, कोई बाहर वाला तो नहीं है ना?
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: There's heavy traffic being reported on Al Ittihad Road through Al Nahda and Al Qasais. Sheikh Mohammed bin Zayed Road par bhi aapko around Al Qasais industrial area and Mubella traffic mil jayega. There's also congestion reported on E311 around Motor City, Arabian Branches, Jumeirah Island and Discovery Gardens. E611 par bhi aapko congestion milega Arabian Branches 3 and Hamdan Sports Complex ke aas paas. Kahin aur phase ho, let me know, call karke 800-1062 par.
7: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
8: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड सबके फेवरेट नूडल्स का दिन है आज, नेशनल नूडल्स डे. और मैंने पूछा था एक सवाल के व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी विद नूडल्स. लेट्स सी हूज इन द कॉल. हेलो.
3: हेलो.
2: हाय, कौन बात कर रहा है?
3: हाय अवनी, दिस इज गौरव.
2: कैसे हैं गौरव आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: बहुत बढ़िया. नूडल्स की याद आ रही है मुझे भूख लग गई है ये बातें करते करते ही. When was the last time you had noodles?
3: Back when I was in India 2 years ago, we went on a trek to Shimla. In Shimla there was a trek, so हम वहाँ गए थे. So I remember we were 4 of friends and we went to this trek and we packed up a lot of Maggie along with us on the trek. It was kind of 10-12 packets of the Maggie.
2: एंड
3: और इतना सामान उठाने के लिए ट्रैक के लिए हमने मतलब स्टोव वगैरह कुकर सब कुछ हमने साथ में रख लिया था, पैक कर लिया था. वी फॉरगेट टू पैक आवर स्टफ लाइक कपड़े एंड एवरीथिंग, बट वी हैड टू रिमेम्बर दैट वी हैड टू पैक मैगी अलोंग.
2: भाई ये पहाड़ों वाले नूडल्स की कहानी हमेशा अलग क्यों होती है?
3: या पहाड़ों की मैगी का तो मजा ही अलग है ना.
2: तो आप सब कुछ स्टोव वगैरह लेके गए, फिर फाइनली बनी की बेचारी सड़बड़
3: गई.
2: यस
3: यस, बिल्कुल बिल्कुल. हमारे साथ हम 4 लोग गए थे वहाँ पे ट्रैक के लिए, तो हम कम से कम 8-10 लोगों ने मैगी खाई है वहाँ पे.
2: अब इंसान इतना सामान लेके जा रहा तो यार बिरयानी ही बना लेते.
3: नहीं, मैगी पहाड़ों पे मैगी का मजा अलग है ना, बिरयानी का उतना मजा नहीं है.
2: याद तो दिला दिया, पहाड़ तो बना हुआ है यहाँ पे, कोल्ड तो उतना हो रखा है मेरे स्टूडियो में फिलहाल. आई थिंक सो मुझे भी खा लेनी चाहिए.
3: बिल्कुल बिल्कुल.
2: ओके, थैंक यू सो मच गौरव फॉर कॉलिंग.
3: थैंक यू अवनी. थैंक यू.
2: बाय. भाई मुझे तो याद आ चुके हैं पहाड़ों वाले नूडल्स. अगर आपको भी आ गए हैं, यू वांट टू शेयर योर मेमोरी ऑफ नूडल्स विद मी, कॉल करो मुझे इस नंबर पर 800-1062. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
4: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो नाम या दाम.
5: नाम मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: ना पकड़ा दूंगा पूरे देश को।
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The beat of Bollywood.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's.
4: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
5: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पर मैं हूँ अवनी आपके साथ, और आज है नेशनल नूडल्स डे. मैंने पूछा था आपसे कि What's been one memory with noodles? Let's see who on a call pe aaj. Hello.
2: Hi, Avni. How are you doing?
1: Main theek hu. Kaun baat kar raha hai?
2: I'm Tanya.
1: Tanya, kaise hain aap?
2: All good.
1: When was the last time you had noodles?
2: I think it was just yesterday. I had it for my lunch.
1: भाई लंच में भी जाते हैं पैट थे नूडल्स. व्हाट काइंड ऑफ नूडल्स?
2: नहीं, दोस आर कप नूडल्स. एक्चुअली आई वाज जस्ट वर्किंग टिल लेट एंड देन रियलाइज एंड फिर टाइम नहीं था ऑर्डर करने के लिए, सो आई हैड अ कप नूडल्स का पैकेट विद मी फेयर व्हिच आई कीप विद मी जनरली आल्सो.
1: भाई सेवियर तो है नूडल्स.
2: Indeed, actually, when you don't understand what to eat, half cup noodles खा लो sorted.
1: तो ये मंडे का, ये मंडे का खाना था. मंडे का तो make sense.
2: हाँ, मंडे, yeah, pretty hectic day of the week and कुछ बोल नहीं सकता यार.
1: Favorite noodles कौन से हैं आपके?
2: Indomie, that's like national noodles of UAE, I would say.
1: I agree. मैंने यहाँ पे आके taste करे थे. I absolutely love them. One favorite memory of yours with noodles?
2: Actually, one favorite, I'd say there are many. Actually, they're like, you know, जैसे हमने बात करी थी सीवियर्स, but I'd say at the time when I was in hostel. जब hostel में कुछ नहीं होता था, I think every single day late night snack, party snack, जो भी hangout snack, that used to be noodles.
1: एंड इट्स सो फीजिबल, बाहर से भी मिल जाते हैं. हॉस्टल में तो आप अंदर भी कुछ ना कुछ रेसिपी बनाते ही रहते हो अपनी.
2: एग्जैक्टली, एंड कितने सारे रेसिपीज, इनोवेशन, चीजी नूडल्स, ये नूडल्स, पता नहीं क्या क्या सॉसेस मिक्स करके, बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन वी हैड.
1: हॉस्टल में निकलते हैं असली शेफ, फिर आप खुद को बनाते हो कि मैंने नूडल्स बना लिए तो अब मैं फुल प्रॉपर शेफ बन चुकी हूँ.
2: बट रियलिटी चेक.
1: तानिया, आपको नूडल्स के अलावा कुछ और बनाना आता है?
2: Well, actually, yes, I can cook lot many stuff, but noodles से ज़्यादा अच्छा तो नहीं.
1: यही पे आ रही थी मैं. Thank you so much, Tanya, for calling. Thank you.
2: Thank you so much, Avni. Have a great day.
1: Same to you. Bye.
2: Bye.
1: You tell me what's your favorite memory with noodles. Call करो मुझे उस नंबर पर 800-1062. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, और मैं ये स्क्रॉल करते करते यहाँ तक पहुँच गई कि एक इटालियन आर्टिस्ट है, उन्होंने एक इनविजिबल स्कल्पचर बेचा है। बॉक्स है ग्लास का, उसके अंदर कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। दे हैव सोल्ड दिस इनविजिबल स्कल्पचर फॉर $18,000। एंड वो कहते हैं द आर्टिस्ट, यू डोंट सी इट बट इट एग्जिस्ट, इट इज मेड ऑफ एयर एंड स्पिरिट। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपके पास $100 million भी हो तो क्या आप ये स्कल्पचर पर खर्चोगे?
3: तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17।
2: वो भी तो कहने की बातें हैं। $18,000 का ये स्कल्पचर विच इज इनविजिबल, आपके पास $100 million हो तो क्या आप खर्चोगे? बताओ मुझे कॉल करके 800-1062 पर। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: टीम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: वक्त।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: बर्फ तो नहीं लेकिन ओस निकलेगी वो भी हमसे क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है फिलहाल चल रही है 70% पर विद टेम्परेचर 36 डिग्रीज बट इट एक्चुअली फील्स लाइक 48-50 डिग्रीज क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो रखी है। देयर इज रेड एंड येलो अलर्ट अक्रॉस यूएई फॉर द फॉगी कंडीशंस।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix. नई नवेली फिल्म जो है रिलीज होने वाली है अक्टूबर 16th को इन सिनेमाज, और उसी फिल्म का एक नया गाना रिलीज हुआ है. यामी गौतम स्टारर द फिल्म, द सॉन्ग उसका नाम है फटा पटा

डिक्शन ही होती है ना यार ऐसे चटपटे गानों में, मुझे बड़े मजे आते हैं। फटाफटा का गाना का नाम है एंड ये फिल्म है आनंद एल राय की, रिलीज होने वाली है इन सिनेमाज 16th October। लेकिन ये सिनेमा में फटेगी या नहीं फटेगी, ब्लॉकबस्टर होगी नहीं होगी, October 16th, gonna check that. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्प राज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: गुप्ता का ट्रैक सॉन्ग का नाम था तो फिर आओ दोबारा फ्रॉम द फिल्म अवारापन 2।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग मिक्स। एंड जब भी यार मुझे कोई बताता था ना मेरे फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कि आप ये इन्फॉर्मेशन गेन कर लो और बहुत ही सिंपल तरीके से बताए, भाई मैं उसको यही बोलती हूँ, भाई बैठे रहो, दोबारा बताओ, एक और बार बता दो। एंड ये आप बोल सकते हो creditmarket.ae को भी। यू ऑलरेडी नो Alfred फ्रॉम insurancemarket.ae। नाउ Alfred कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस टू। करना कुछ नहीं है, बस आपको विजिट करना है creditmarket.ae पर, या फिर आप कॉल कर सकते हो 800 Alfred पर। That's exactly what I say. जब भी मुझे कोई financial health, financial information के बारे में बता रहा होता है, well, Naja track coming up your way after this one. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:06।
1: Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, and this is the time we play. आज तो खेलने में मजे आएंगे. आज है नेशनल नूडल्स डे, एंड यूएई के जो नूडल्स हैं जेन्युइनली इतने यम्मी हैं, इतने टेस्टी हैं, जो मुझे ऑफकोर्स इंडिया में नहीं मिलते थे, मैंने यहाँ पर आके नए वाले ट्राई करे हैं. गोना टॉक अबाउट दैट. दूंगी मैं आपको दो ऑप्शंस, उनमें से आपको रैपिड फायर राउंड खेलना है कि दोनों में से फटाफट कौन से नूडल्स का आप ऑप्शन चूज करोगे. मैसेज करो मुझे 0543091062 पर, दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर. आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट्स एज वेल. तीन शौक यही है कि तीन प्रकार के नूडल्स में खा लूं, पूरे तीन मील्स में तो मेरा खाना हो जाता है. 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर. पिंग मी हियर अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
2: यो यो यो यो करनोजला.

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mogembo! खुश हुआ
3: मिस्टर अनूप. हाय, गुड इवनिंग.
4: गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
4: मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया.
3: नेम थ्री थिंग्स दैट आर येलो इन कलर.
4: बनाना
3: और थिंग्स.
4: ऑरेंज एंड
3: ऑरेंज इज येलो इन कलर. बहुत बढ़िया अनूप साहब, तालियां मेरी तरफ से. ऑरेंज इज येलो इन कलर, वेरी नाइस. थ्री थिंग्स.
4: ऑरेंज के अंदर के पार्ट.
3: ऑरेंज के अंदर के पार्ट भी सर ऑरेंज ही होते हैं, वो येलो नहीं होते हैं. आप कहाँ से ये बासी सामान खरीद रहे हो? अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे. तीन ऐसी चीजें जो आप करते हैं जिससे बीवी बहुत गुस्सा होती है आप पे.
4: मोबाइल टॉयलेट में लेके जाना, लंबी बात करना, ज्यादा वीकेंड का काम करना.
3: लंबी बातें करते किससे हो बाथरूम में जाके?
4: बाथरूम में नहीं, मोबाइल. बाथरूम में जाके स्क्रॉलिंग करता हूँ.
3: हाँ, तो लंबी बातें किससे कर रहे हो आजकल?
4: घर वालों के साथ, इंडिया में वगैरह.
3: ओ, घर वाले ही है ना, कोई बाहर वाला तो नहीं है ना.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
0: यू आर लिसनिंग टू द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: देयर इज रेड एंड येलो अलर्ट अक्रॉस यूएई बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, फॉगी टेम्परेचर्स. राइट नाउ इट्स 36 डिग्रीज बट इट फील्स लाइक 50 जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी. इट्स एट 65%.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने आज कॉल किया है मुर्तजा को. हाय मुर्तजा.
4: हाय अवनी, हाउ आर यू?
3: मैं बहुत बढ़िया. हम नूडल्स डे के बारे में बात कर रहे हैं. आज नेशनल नूडल्स डे है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड नूडल्स?
4: आपको ऑनेस्टली बताओ तो कल रात को नूडल्स खाए मैंने.
3: डिनर में?
4: रात को 12 बजे भूख लग रही थी और कुछ भी नहीं था घर पे. और इंडिया से मेरा फ्रेंड आया था, वो मैगी के नूडल्स लेके आया था.
3: वाओ.
4: हमने गर्म करके खाया.
3: वही यही होता है, बताइए. कोई भी टाइप ऑफ नूडल्स हो जाए, ये हमारा सेवियर है. जब भी भूख लगे इंस्टेंटली बना लो.
4: एग्जैक्टली, इंस्टेंट नूडल्स.
3: अच्छा, लेट्स सी कि आपका इनमें से कौन से फेवरेट नूडल्स हैं. वी आर गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो. मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? आपको बताना है कि इन दोनों में से आप कौन से नूडल्स चूज करोगे, ठीक है?
4: ओके.
3: इंस्टेंट नूडल्स या कप नूडल्स?
4: इंस्टेंट नूडल्स.
3: इंस्टेंट नूडल्स या राइस नूडल्स?
4: इंस्टेंट नूडल्स.
3: इंस्टेंट नूडल्स या ग्लास नूडल्स?
4: ग्लास नूडल्स.
3: ग्लास नूडल्स या पैड थाई?
4: ग्लास नूडल्स.
3: ग्लास नूडल्स या हाका नूडल्स?
4: हाका नूडल्स.
3: हाका नूडल्स या रामेन?
4: हाका नूडल्स.
3: हाका नूडल्स या सोबा?
4: हाका नूडल्स.
3: हाका नूडल्स या चाउमीन? चाउमीन. या वर्मिसली?
4: चाउमीन.
3: चाउमीन या कोरियन?
4: चाउमीन.
3: चाउमीन या एग नूडल्स?
4: चाउमीन.
3: चाउमीन या सिंगापुर नूडल्स?
4: चाउमीन.
3: चाउमीन. ये जो स्ट्रीट फूड है ना, इससे ऊपर तो हम नहीं पहुंच पाएंगे. अच्छा लास्ट, चाउमीन या फिर इंस्टेंट नूडल्स?
4: चाउमीन.
3: टफ चॉइस है लेकिन यार, पसंद तो दोनों है. नहीं,
4: पसंद दोनों है, बट इंस्टेंट पे फायदा हुआ है कि तुरंत बन जाता है, बट चाउमीन खाने का मजा ही अलग है.
3: बात तो सही है. और फिर आप मुझे कौन सा कब खिलाने वाले भी बता दो.
4: जो आप बोलो. मेरे घर पे रखे हैं, वो इंस्टेंट भी है, सब फ्लेवर इसके अंदर.
3: अच्छा, आपको मुर्तजा ये नूडल्स के अलावा कुछ बनाना आता है इंस्टेंट नूडल्स के अलावा?
4: यस, आई मेक बहुत अच्छी भिंडी बना लेता हूँ. आई लव भिंडी. उसके अलावा पूरी भाजी, बस यूट्यूब पे देख के सीखा है और कुछ नहीं.
3: लेकिन बेस्ट तो मैं कह रही हूँ, तब भी नूडल्स ही बनाते हो गए आप? नहीं.
4: हाँ, कुछ नहीं हो सकता.
3: सबका पेटेंट बेस्ट डिश इंस्टेंट नूडल्स ही है.
4: सही कहा आपने.
3: Thank you so much, Murtaza. You tell me, call karke 800-1062 par, what's your favorite memory with noodles? Aaj National Noodles Day hai, aur main pakka aaj dinner mein yahi order karne wali hu, ya fir ghar jaake bana lungi. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अमर सिंह चमकीला के टाइम का ही गाना है, लेकिन द रिमिक्स वर्जन भी आज इतना मजे से सुनते हैं।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग मिक्स। एंड यार ये वाले गाने जब आप गेड़ी पर जा रहे होते ना, बाहर ड्राइव पर हो, भाई मुझसे एक बार कोई पूछ ले ड्राइव के लिए, मजा ले मैं मना कर दूं। हमेशा यही आंसर रहता है मेरा, अगर आपको भी ड्राइव पर जाना है, गाड़ी लेनी है, नाउ यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम डेटोर एंड स्कोडा विद प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम पर मंथ फॉर अ 12-month प्लान। विजिट selfdrive.ae, TNC अप्लाई।
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे,
0: ऐसे ऑफर्स डिस्काउंट सुन के हाय होता है। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: वेरी वेरी हॉट एंड हेजी आउटसाइड, 35 डिग्रीज हो रहे हैं लेकिन इट फील्स लाइक 50। व्हाई? बिकॉज ह्यूमिड लेवल्स जो हैं फिलहाल 70% पर हैं। ट्राई टू स्टे इंडोर्स। छुट्टी हो गई है तो घर तो जा ही रहे हो अब यार।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात करने वाली थी अबाउट द 9-day हॉलीडे दैट यू कैन गेट एट द एंड ऑफ दिस ईयर. नेशनल डे जो है यूए का 2nd December को है, उसके साथ साथ दो वीकेंड्स आ रहे हैं साथ साथ में. 28th, 29th November इज सैटरडे संडे, 30th को मंडे है, 30th and 1 को हो सकता है कि छुट्टी हो, या फिर 1 या फिर 2 को हो सकता है छुट्टी हो. अगर आप 30th and 3rd and 4th December की एनुअल लीव डालते हो, 5th और 6th को फिर से सैटरडे संडे पड़ जाता है, देन आप 7th को मंडे से फिर से ज्वाइन कर सकते हो ऑफिस. भाई कितना दिमाग चलता है ना जब इस ये छुट्टी की बातें आती
2: हैं. कुछ है
1: ये वाला एक्चुअली हो सकता है, पॉसिबल है ये. 3-day एनुअल लीव बचा लो और उस वक्त पर ले लेना ताकि आप 9 days हॉलीडे इंजॉय कर पाओ. एंड हैविंग सेड दैट, अगर आपने ऑलरेडी ये वाली छुट्टी प्लान कर ली है, हाउ डिड यू प्लान इट, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. And you know, as a kid, हमें जब भी कुछ fix करना होता था, maximum हम bandit तक जाते थे. But fixing things as an adult, हम coffee try कर लेते हैं, मीठा order कर लेते हैं, for me it's matcha, या फिर हम cheese cake order कर लेते हैं, फिर हम इसे order कर लेते हैं. You tell me यार, कि when you have to fix things in your life, आपको लगता है कि यार mood बहुत low चल रहा है, then this thing will fix my mood. वो क्या है? मैसेज करो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 054-309-1062 पर. आपको लगता है कि आपकी वाली चीज जादू कर सकती है, वो कौन सी चीज है? सबके साथ शेयर करो ना यार. 054-309-1062 is the WhatsApp number. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा है जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम का पेज, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNIY AAA R. एंड जैसा ये दिन निकला है ना यार,
3: आँखों में तेरी अजब सी अदाएं
2: नहीं, नींद है फिलहाल, नींद, और वो भी सिर्फ वेदर की वजह से. इतना ह्यूमिडिटी जो है ये करती है, मुझे पता नहीं था. छुट्टी हो गई है, घर जा रहे हो आप अपने अपने, लेकिन घर जाके सो जाना उससे पहले.
4: हाँ उड़ता पंजाब,
2: जगाते रहेंगे आपको विद दीस चटपटे सॉन्ग्स कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2. कीप इट लॉक्ड.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The big thrill with me, 6.2 by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, यह है बिग थ्रिल ऑफ मानसी. ट्यूसडे की शाम है, अभी वीकेंड दूर है, बट वीकेंड के प्लान्स हम आज शाम भी बनाएंगे. समथिंग वेरी एक्साइटिंग हैपनिंग दिस सैटरडे, आई हैव गॉट इनवाइट्स टू गिव यू. बट एवरी सिंगल इवनिंग व्हाइल यू आर हेडिंग बैक होम, आप जब ट्रैफिक जैम में अटकते हैं, हम यहाँ जैम करते हैं विद द कारियोकी. अब दो चीजें हैं जो हम देसियों को बड़ी अच्छी लगती हैं, खाना और गाना. आज दोनों की बातें करेंगे क्योंकि आज है वर्ल्ड नूडल डे. फॉर मी एज अ देसी, नूडल्स कभी नूडल्स नहीं थे, चाउमीन हुआ करते थे, वो भी ग्रोइंग अप ट्यूशन के बाहर. वो जो 10 रुपए के सॉस से लबालब, नॉट इवन केचप, सॉस से लबालब चाउमीन मिलती थी. तो आज उन यादों को ताजा करेंगे. फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:04।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Tana.
1: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: हाँ जी, हर शाम 5 से 6 जब आप ट्रैफिक जैम में अटकते हैं, हम यहाँ जैम करते हैं विद कारियोकी। गाना आयाना आए, अगर गाने का शौक है देन दिस इज इट। एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर नॉन सिंगर्स। अपना टैलेंट सिर्फ बाथरूम तक मत रखो, यहाँ पे अपना टैलेंट पूरे यूएई तक पहुँचाओ।
2: कारियोकी।
3: Okay, today happens to be someone really, really special's birthday, and I have to say one of the most good-looking man in the industry. इनसे ज़्यादा खूबसूरत, handsome-looking बंदा जो है, मैंने till date Bollywood में नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ विनोद खन्ना साहब की, and आज 6th of October का उनका birth anniversary होता है, उनका birthday होता है। He's given us some mind-blowing cinema, he has given us some beautiful songs, but I have to say विनोद खन्ना एज ललित इन दिस मूवी इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। अगर मैं चांदनी होती तो मैं रोहित के साथ नहीं, ललित के साथ जाती, बिकॉज ही वॉज ऑल अबाउट गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।

0: कुर्ता पजामा, वो बारिश इस गाने में, एंड ऑफ कोर्स हिज फेमस चिन डिंपल। अगर आपको गाना याद आ गया है, विच आई एम श्योर याद आ गया होगा, 800-1062 इज द नंबर टू डायल। वी आर कैरियोकिंग एंड सेलिब्रेटिंग विनोद खन्ना। शाम
1: कैरियोकी।

0: The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com. Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital, your health matters. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: एक घंटा 24 मिनट का डिले ऑन शेख जायद, ये तो बस शुरुआत है. आगे आगे देखो होता है क्या. हैवी ट्रैफिक एट द मोमेंट. अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे मरिफ टू मुहेसना ऑल द वे टुवर्ड्स एतिहाद मॉल, 47 टू 50 मिनट डिले. इट इज पैक्ड, स्टैंड स्टिल, नॉट मूविंग एट ऑल. अगर आप गिसेस के आसपास हैं, हैवी ट्रैफिक इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अबूहेल फ्रॉम डेरा. ऑल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको मिलने वाला है डिबाई गोल सूख फहीदी के आसपास, करामा मनकूल उद मेहता अगेन पैक्ड, जुमेरा रोड जुमेरा वन से. इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स जुमेरा बीच इट इज अ बिट पैची राइट नाउ. अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया अगेन 15 टू 20 मिनट डिले. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
2: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
3: Share market इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है. और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ. बहुत गहरा जाना चाहता हूँ. देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ. और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती. लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill. I'm Mansi. We are karaoke-ing. Joining us is Shadil. Hi, Shadil.
2: Hi, कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
2: मैं बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास.
1: कहाँ से हो आप शादिल?
2: मैं इंडिया, लखनऊ, यूपी.
1: लखनऊ से हो. अच्छा, आज ना वर्ल्ड नूडल डे है. मैं बात कर रही थी कि हम देसियों के लिए नूडल्स कभी नूडल्स नहीं, चाउमीन थे.
2: जी, सही कह रहे हैं.
1: जिसमें मतलब नूडल्स कम होते थे और वो टोमेटो केचप ज्यादा होती थी. मेरी मम्मी कहती थी ये कद्दू की केचप बनाते हैं, सॉस ही बोलते थे उसको. तो लखनऊ में अगर ये देसी चाउमीन खाना हो तो कहाँ जाना चाहिए?
2: चाउमीन खाना है तो आपको जॉपलिंग रोड पर जाना चाहिए. उधर एक नेपाली कुछ ठेले हैं, वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, वहाँ बहुत टेस्टी होता है.
1: इतनी मिर्चें डालते हैं ना, पर मजा आ जाता है. जब मैं स्कूल में थी तो 10 रुपए की हाफ प्लेट मिलती थी, बट उससे अच्छी चाउमीन मैंने नहीं खाई. फिलहाल आप अच्छे खाने की बात हमने कर ली है, आप अच्छा गाना सुनाएंगे हमें. गाना पहचान लिया आपने?
2: जी, पहचान लिया.
1: पसंद है ये गाना आपको?
2: बहुत ज्यादा.
1: विनोद खन्ना पसंद है?
2: जी, बहुत ज्यादा पसंद है.
1: बहुत बढ़िया,
2: काफी मूवीज देखी हैं.
1: हाँ, ये गाना मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. सुरेश वाडकर ने गाया है. आशाम शाह दिल की आवाज में सुनेंगे.
2: जी, जी.

0: हाँ जी
1: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है,
2: लगी आग सीने में फिर जल पड़ी है,
1: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: बारिशों में किसी को याद करते हुए आपने गाना सुना है कभी?
1: यस
0: हाँ, शर्मा गए
1: कुछ

0: में खिले थे,
1: आय हाय,
0: मगर ये है ख्वाबो ख्यालों की बातें।
1: वाह,
0: कभी टूट के
1: चीज कोई जुड़ी है,
0: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
1: टन टन नन नन,
0: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
1: ओरिजिनल गाना सुरेश वाडकर, आपने थोड़ा हिमेश रेशमिया के अंदाज में गाया, इनफैक्ट हमने थोड़ा हिमेश रेशमिया के अंदाज में गाया दोनों ने, बट क्या गाना है, मजा आ गया, मजा आ गया।
0: बरसात हो तो सबसे,
1: अब बरसात होनी चाहिए। हाँ, मैं भी पहला गाना यही सुनती हूँ, हो जानी चाहिए बरसात।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए शाहदिल, आपका दिल ऐसे ही लगा रहे बारिशों के साथ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आपने। अगर आप भी ये गाना गाना चाहते हैं, इट्स क्लोज टू योर हार्ट, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
2: कारियोकी Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Life funny, keeping you company. I'm Man TV, our Kario King.
1: Kajra re.
0: And of course, traffic jam mein aap thake na, to energy ke liye Alisha Chinoy ke baaz mein coming up in just a bit. Tuesday ki sham hai, but moon in Mahal, weekend wala hai. जब से मैं गाड़ी चलाने लगी हूँ तब से मुझे समझ में आया कि गानों का कितना फर्क पड़ता है गाड़ी में, स्पेशली जब आप ट्रैफिक में हो. ये गाना जो है कॉफी का, एनर्जी का काम करता है. कमिंग अप नेक्स्ट.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I'm Mansi and we are karaokeing here. Joining us now is Mudassar, someone who's got a very, very nice voice. I hope I'm not the first one to compliment.
2: Thank you. I'm really
1: मुजफ्फर, आप गाना गाने का शौक रखते हैं, आपकी आवाज से समझ आ रहा है मुझे, तो पहले मैं आपका गाना सुनूंगी फिर हम बातें करेंगे, क्योंकि ये गाना बहुत खूबसूरत है।
2: जी, कौन सा है ये?
1: है कौन सा? आपने कॉल किया है सर?
2: ये कॉल तो मैंने किया, लेकिन गाना कौन सा है? ये वही है क्या, चांदनी का?
1: हाँ जी। मुझे लगा कि आपने फोन किया है।
2: नहीं, अभी शादुल ने जो गाया।
1: हाँ जी, जो शादुल ने गाया अब आप गाएंगे।
2: हाँ जरूर।

0: हाँ जी।
1: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, कहीं आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: वाह,
2: आगे की तरह याद नहीं लाइन।
0: अच्छा, आगे की लाइनें भूल गए, पर जितना गाया अच्छा गाया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने दिल जीता है।
2: आपका शो है ना, सबका दिल जीतता है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ विनोद खन्ना दिस इवनिंग।
2: क्योंकि वो वैसा वो एक्टर में बहुत मुश्किल है।
0: इतने खूबसूरत, मतलब उनसे ज्यादा खूबसूरत,
2: हैंडसम, बहुत स्मार्ट, इतने खूबसूरत, इतना
0: पर्सनालिटी, व्हाट अ पर्सनालिटी,
2: वेरी गुड पर्सनालिटी।
0: किसी ने आपको बोला है कि आप उनकी तरह दिखते हैं कभी?
2: नहीं नहीं, मैं तो अनिल की तरह दिखता हूँ।
0: अनिल को, अनिल कपूर,
2: अनिल कपूर की तरह बाल मेरे।
0: हाय हाय, देखो यहाँ पे यूएई में रहकर अगर आप अनिल कपूर जैसे बाल हैं आपके, तो प्लीज शुक्र मनाए, आप लकी लोगों में से हैं, क्योंकि यहाँ लोग अनुपम खेर बन जाते हैं 2-3 सालों में।
2: नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग बन चुके हैं।
0: वही ना,
2: तो बोलते यार तू जब से आया बाल तेरे झड़ते नहीं, हमारे बाल चले
0: बस,
2: जाते
0: बस, बस नजर से बचाएं खुद को। हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग।
2: थैंक यू,
0: बाय बाय
2: बाय बाय बाय।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, ये है Big Thrill, मैं हूँ मानसी। आज है वर्ल्ड नूडल डे। ये जेन ज़ी के होते होंगे, ये कौन से नूडल्स खाते हैं, ये कोरियन बुडॉक पुडॉक। हम देसियों के लिए, I'm talking about millennials, नूडल्स मतलब चाउमीन हुआ करता था, वो भी कोचिंग के बाहर वो ठेले पर, आय हाय हाय, जिसमें ना वो पानी मिलाई हुई केचप साथ में मिला करती थी इन दोज बॉटल्स, एंड मम्मी कहती थी ये कद्दू वाली सॉस है, बट कोई मुकाबला नहीं है। आज भी उस चाउमीन का स्वाद जुबान से नहीं जाता है। सो यस, आई गेस फॉर अस मिलेनियल्स, नूडल्स का मतलब चाउमीन। ऑल्सो दिस आर ऑफ द शो वी आर प्लेइंग दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर। मुझे पता है इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट चैलेंज अगर एक्सेप्ट करते हो तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 6:06
1: Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. You have Big Thrill and Mansi. We're playing the 5-second rule. Joining us is Shikha. Good evening, Shikha.
2: Hey, good evening, Mansi.
1: How are you? How was your Tuesday?
2: I'm well. Oh, yeah, it was good. It was good.
1: Are you a millennial or a Gen Z?
2: I am a millennial by heart, by everything. Yes, I am millennial.
1: But आपके accent से मुझे लग नहीं रहा है कि आपने कभी वो ठेले वाली चाउमीन खाई होगी.
2: नहीं नहीं, ठेले वाली चाउमीन खाई नहीं है.
1: हाँ, मुझे लग रहा है
2: क्योंकि हम यहाँ के born brought up
1: हैं. I understand. You are the ones जो नहीं नहीं नहीं mineral water के बिना हमारा गुजारा नहीं है. बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं भैया वाला.
2: I still do that. I still do that.
1: After staying here for 11 years, even I do this and that. I understand it's no drama. It's just that we're so used to clean water that it really upsets our stomach.
2: Yes, we are pampered. Yes, you're right.
1: But the thing is, I still go and have those thele wali chowmein.
2: Oh, okay. That's cute.
1: But growing up in the UAE, aisa kuch desi version of noodles aapne khaya hai kabhi?
2: Desi version of noodles, मैगी नूडल्स खाया जो इंडिया से आता है. मैगी नूडल्स वो
1: आई डोंट थिंक सो के वो वाली मिर्चें यू विल बी एबल टू हैंडल. सो डू नॉट ट्राई व्हेन यू गो टू इंडिया. फिलहाल विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर. Okay, now because you told me that you were born and raised here, 3 things as a kid you were not allowed to eat. आपको चौकी चौकी मिला था. हम इंडिया में बड़े हुए, वहाँ पे एक चीज होती थी जिसका नाम होता था पेप्सी, विच हैज नथिंग टू डू विद द सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी. वो मिलती थी बड़ी शेडी सी जगह में. इन सम रैपर विद सम आइस गोला, आई डोंट नो, वी वर बैंड. बट फिर भी हम छुप छुप के खाते थे. 3 अक्षय कुमार की मूवी शिखा.
2: मैं नारी तू खिलाड़ी.
1: हाँ,
2: मुझसे शादी करोगी.
1: टाइम खत्म हो गया. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक बाबा. इट्स जस्ट 5 seconds. आई नो. 3 things दैट आर ब्लू इन कलर. 3 things ब्लू इन कलर.
2: स्काई, वाटर, माय जैकेट.
1: ओह नाइस. 3 things दैट यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम.
2: होटल रूम, टिश्यू, टॉवल, सैनिटाइजर.
1: हाँ, मिलता है ना सैनिटाइजर. अभी आप 7 स्टार में जाते हो, सैनिटाइजर मिलता होगा. हमें तो खाली बॉडी लोशन और शावर जेल से ही काम चलाना पड़ता है. 3 things दैट आर अ बिग नो नो फॉर यू शिखा व्हेन आई टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप.3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें आता है द वर्ड दिल.
2: दिल तो पागल है, दिल दे चुके सनम,
1: एंड दिल दिल
2: हम दिल दे चुके सनम
1: बोल दिया था. आई टोल्ड यू इट साउंड्स वेरी वेरी इजी बट इट्स नॉट राइट.
2: It's not.
1: 3 Bollywood celebrities with the letter M.
2: Mahima Chaudhary, Madhuri Dixit,
1: and
2: Madhuvan.
1: That's R Madhuvan. Almost there. Almost
2: Come
1: there.
2: On.
0: 5 second rule.
2: Maggie.
1: Filhal, you have a great evening. Right. Thank you so much, Shikha.
2: Thank you, Mansi. You were fun to talk to. Really.
1: Thank you so much for introducing me to Chalky Chalky.
2: Please have it and remember.
1: I will have it. I am an adult. Yeah. I make all the wrong decisions. Okay, bye.
2: Yes, yes. Okay, bye. Good evening.
1: Yeah, 5 second rule. Like I said, it sounds very, very easy, but it isn't. If you want to play, 800-1062 is the number to dial.

0: खुला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

लुक एट द यूनिवर्स, एक ही हफ्ते में हमें चल रहे बाल, विच इज वाल इन पंजाबी, एंड एक कचौड़ी दो समोसा साथ मिल गए हैं। फिलहाल आशा मिलने वाला है आप में से एक को मौका टू फ्लाई विद टीम बिग टू जर्मनी। अगर आप हुए थे शॉर्टलिस्ट तो बस फोन को अपने पास रखिए, दिल की धड़कनें काबू में रखिए। अगला कॉल जो आएगा 800-1062 से, उसे मिस नहीं करना है, क्योंकि वो कॉल आपको सीधा जर्मनी लेके जाएगा। कमिंग अप नेक्स्ट।

0: चलेगा अराउंड 20 to 25 मिनट का वहां पे उस पूरे रूट पर। कुछ और अगर आपने रिपोर्ट करना है मुझे बताएं 800-1062 पर।
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I am Mansi right here. We're playing the 5-second rule. And on the phone lines, I have Pragya. Hi, Pragya. Good evening.
2: Hi, Mansi. Good evening.
1: How are you, Pragya? Kaisa raha aaj ka din?
2: Good.
1: चलो प्रज्ञा, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें बतानी है खटाखट फटाफट 5 second के अंदर.
0: 5-second rule.
3: Okay. Oh yeah.
1: तीन काजोल की movies.
2: दिलवाले.
1: और.
2: कुछ कुछ होता है.
1: और.
2: कभी कुछ कभी गम.
1: Not bad at all. हो गया. Not bad at all. Almost there. Quickly tell me तीन ऐसी चीजें जो yellow color की होती हैं. You can eat.
2: Mango.
1: और.
2: Orange.
1: Time orange is yellow color and you can eat. Very nice, Pragya. Love it. You've really had a long day. Quickly tell me 3 red flags in a relationship.
2: अरे
1: एक भी नहीं पता. हो गई शादी, नहीं हुई है, डेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो.
2: I was never in a relationship.
1: You were never in a relationship.
2: Yeah, I directly got married.
1: अच्छा, तो तीन ऐसी चीजें जो शादी के बाद बदल गई हैं प्रज्ञा. पांच 5-second रूल है प्रज्ञा. आप शुरू ही 4 second के बाद करते हो.
0: 5 second.
1: अरे कितनी कितनी क्यूट है, हंसे जा रही है. मुझे लगता है ऐसी ही करी होगी तो हस्बैंड ने भी हाँ कर दिया होगा, है ना. यहाँ भी हंस रही है. इतनी खुशी मुझसे बात करने की है कि साइड में इज ही टिकलिंग यू.
2: No,
1: am I in the wrong profession? Should I be a stand-up comedian?
2: Yeah, you can try actually.
1: Yeah, आप जैसे दो ऑडियंस के भरोसे नहीं चलेगा मेरा करियर. दोनों ऐसे हंसे जा रहे हो, पता नहीं कोई इंटरनल जोक होगा. हमें पता नहीं है, नई नई शादी हुई है, होते हैं कपल्स के जोक ऐसे ही हाँ हाँ करने वाले. बट खेला बड़ा खराब प्रज्ञा आपने. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. ठीक है, बाय. यही है 5-second रूल. अगर आपने खेलना, एक ही रूल है, मुझे कॉल करना 800-1062.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening, yeah, Big Thrill. मैं हूँ Mansi. और अगर इंडिया से कोई दोस्त जिसने सालों से हेलो हाई नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको हाई लिखे, आप हाई का जवाब दो और वो टाइप करने लगे, तो मेरे तो दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं. क्योंकि जब जब ये नया आईफोन आता है ना, मुझे स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस पेड़ पे ही लगे हैं हमारे पास. फिलहाल आपने स्ट्रेस नहीं लेनी है, हम आपको ले जा रहे हैं वेकेशन पे. वी टेकिंग यू टू जर्मनी. इट्स टाइम फॉर द बिग चेक इन. एंड इफ यू वर वन ऑफ दोस शॉर्टलिस्टेड वंस, if you get a call in the next 30 minutes, October is going to be the luckiest month of this year for you, because that call will confirm your seat to this fantastic trip that we are taking to Germany. So agar aap shortlist hue the, 800-1062 se call miss nahi karna hai in the next 30 minutes.

0: और झुमका।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक।
3: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: Bollywood.

0: इस गाने की ना फील ड्राइव करते हुए आती है, धुरंधर की पूरी एल्बम की फील ड्राइव करते हुए आती है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि यार फील तो लेनी है, ड्राइव तो करना है, वेयर डू आई गेट अ कार फ्रॉम, आई गॉट द परफेक्ट प्लेस।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: Alright, you can now lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month. This is for a 12-month plan. Do visit selfdrive.ae for more details. Terms and conditions do apply.
1: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र, और तेरा जिक्र सिर्फ इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है।
1: अब ये आवाज दुबई आने वाली है, दर्शन चोपड़ा की ही आवाज है एंड दिस इज हिज स्टाइल ऑफ सिंगिंग। जिक्र आपके लिए लेकर आए हैं दर्शन चोपड़ा लाइव इन दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस सैटरडे 10th अक्टूबर को एट द जंक्शन। बुक योर टिकट्स राइट नाउ बिफोर दे आर सोल्ड आउट। platinumlist.net पे आपको टिकट्स मिलेंगी। दिस इज हैपनिंग एट द जंक्शन अल सिरकाल एवेन्यू पे। दर्शन चोपड़ा इज फैंटास्टिक, सो इज द वाइब ऑफ जिक्र। तो इफ यू लव योर म्यूजिक नॉस्टैल्जिया, दिस इज वेर यू नीड टू बी। डोर्स ओपन एट 5:30 PM एंड द शो स्टार्ट्स एट 6:30, सो गेट योर टिकट्स platinumlist.net पर। फिलहाल दिस इवेंट इज मेड लार्ज बाय अस बिग 106.2, सो गिविंग यू अ चांस टू विन कपल इनवाइट्स टू विटनेस दर्शन चोपड़ा लाइव दिस सैटरडे। वेरी वेरी सिंपल, आपने मुझे बताना है ये जो गाना है

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure. Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Mina Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: Inkar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
3: Okay, what's your favorite memory with noodles? Let's see who's in the call. Hello.
4: Hi, Abhi. This is Gaurav.
3: कैसे हैं गौरव आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: बहुत बढ़िया. नूडल्स की याद आ रही है मुझे भूख लग गई है ये बातें करते करते. When was the last time you had noodles?
4: Back when I was in India 2 years ago, we went on a track to Shimla. In Shimla there was a track, so हम वहाँ गए थे. So I remember we were four of friends and we went to this track and we packed up a lot of Maggie along with us on the track. It was kind of 10-12 packets. हमने स्टोव वगैरह कुकर सब कुछ हमने साथ में रख लिया था. कर लिया था. वी फॉरगेट टू पैक आवर स्टफ लाइक कपड़े एंड एवरीथिंग, बट वी हैड टू रिमेम्बर दैट वी हैड टू पैक मैगी अलोंग.
3: भाई ये पहाड़ों वाले नूडल्स की कहानी हमेशा अलग क्यों होती है?
4: या पहाड़ों की मैगी का तो मजा ही अलग है ना.
3: तो आप सब कुछ स्टोव वगैरह लेके गए, फिर फाइनली बनी की बेचारी सड़बड़ गई.
4: यस यस, बिल्कुल बिल्कुल. हमारे साथ हम चार लोग गए थे वहाँ पे ट्रैक के लिए, तो हम कम से कम 8-10 लोगों ने मैगी खाई है वहाँ.
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Still a 47-minute delay. अगर आप शिकायत पे, it's packed bumper to bumper. Downtown के पास बहुत ही slow moving traffic है. There's heavy traffic near the Dubai Mall. Plus traffic from Dera going towards Gurair. इस स्लो मूविंग आपको 20 to 25 मिनट का डिले उस रूट पे भी फिलहाल मिलेगा. दिस ट्रैफिक ऑन द हेस स्ट्रीट स्पेशली इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स मोटर सिटी अल्कूज 1 से अल्कूज 3 पैची ट्रैफिक नॉट रियली बैड 10 to 12 मिनट का डिले. इसके अलावा देर इज सम ट्रैफिक नियर मदीना जुमेरा एंड यू विल फाइंड ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड सुफू. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताओ 800-1062 पर.
5: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
0: Big 106.2. Big 106.2. Yeah!

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I know it's a Tuesday, but we are adults and हमें planning की ज़रूरत होती है. We're making plans for Saturday. Darshan Chopra is performing live in Dubai for the very first time. ज़िक्रा आपके लिए लेकर आए हैं. Darshan Chopra, he is a brilliant singer, great storyteller. If you love good music, melodies, and of course, good stories, this is where you need to be. And आप अपने tickets जो हैं वो ले सकते हैं platinumlist.net से. यहाँ भी tickets जीतने का मौका आपको मैंने दिया था. शिल्पी आ चुकी है. Hi शिल्पी.
2: Hi Mansi.
1: How are you? कैसे रहा आपका Tuesday?
2: बहुत hectic था.
1: I know. अभी घर पहुँचे नहीं पहुँचे?
2: नहीं
1: यार. यार, पर मेरे लिए अच्छा है. हमारा तो bread and butter traffic है, तो और traffic बढ़े हैं. देखो आप फंसते हो, but हमारा तो इसी से गुजारा है ना.
2: और हमारे लिए भी अच्छा टाइम पास हो जाता है. बहुत अच्छा
1: ये देखो ये देखो. चलो शुक्र है आगे की लाइन बोली, वरना टाइम पास पे मैं तो एकदम ट्रॉमा आ जाता है मुझे. कई लोगों ने मुझे टाइम पास बना दिया था एक जमाने में. शिल्पी फिलहाल व्हाट प्लान्स फॉर सैटरडे? आर यू अ फैन ऑफ दी स्लो इवनिंग्स? डू यू लाइक लिसनिंग टू महफिल्स में सूफी म्यूजिक, नाइस मेलोडीज?
2: ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ दर्शन चोपड़ा.
1: आ नाइस. सो मैंने यहाँ एक गाना सुनाया था आपको. पूछा था ये गाना है कौन सा शिल्पी?
2: तो फिर
1: गलत जवाब. इतने कॉन्फिडेंस से आज से पहले किसी ने दिया नहीं है जितना शिल्पी ने दिया. गा भी दिया तो फिर आओ.
2: वो लम्हे.
1: डिसाइड करो, तो फिर आओ या वो लम्हे.
2: नहीं नहीं, वो लम्हे वो वाला है.
3: वो लम्हे
1: वो बातें. तो ये पहले तो फिर आओ क्यों लगा था?
2: मुझे लगा वो थोड़ा सा सिमिलर ट्यून.
1: हाँ, एक्टर सिमिलर है, ट्यून सिमिलर नहीं है. फिलहाल शिल्पी कंग्रेचुलेशंस. आफ्टर अ लॉन्ग वीक इन ट्रैफिक, आई एम गिविंग यू अ चांस टू अनवाइंड. यू विल हैव सो मच फन. यू ऑलरेडी नो दर्शन चोपड़ा, ही इज ब्रिलियंट. पहली बार ही इज कमिंग टू द UAE. सो कपल टिकट्स आपके हुए. कंग्रेचुलेशंस.
2: Thank you so much.
1: I will see you there. थोड़ा वीकेंड है, सो के आना दोपहर में. We'll enjoy the evening together.
2: Sure. Thank you so much again, Mansi. Bye. You have a great
1: day. You too.
2: Bye.
0: Big 106.2.

0: big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey.

0: Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 34 degrees है, लो जाएगा 31 तक. Humidity बरकरार 71% पर फिलहाल.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Celebrating this cult which I haven't seen. 1995 ki sabse badi blockbuster made with around 8.5 crores ka budget but made around 35 crores. Like I said, the biggest blockbuster of 1995. Those Star Kids ka debut. Massive music, great songs. Right now joining us is Sunny Paji. Good evening.
3: Good evening.
2: Kaise hain aap? Kaise aapke Tuesday? फिर तो आपका कोई टाइमिंग नहीं है सर, जब बुलावा आया तब जाना पड़ता है. फिलहाल सनी, दो स्टार किड्स का डेब्यू हुआ था आज ही के दिन. मैसिव मूवी फ्रॉम 1995. इनफैक्ट जिस स्टार किड का डेब्यू हुआ था उनके बड़े भाई का नाम भी सनी है. मूवी का नाम क्या था?
3: बरसात.
2: बिल्कुल सही जवाब. देखी है आपने ये मूवी? मैंने नहीं देखी. तो जरा मुझे छोटे करके एकदम लाइक शॉर्ट में समरी करके कहानी बताओ कि इतनी बड़ी हिट ये मूवी क्यों हुई थी.
3: गरीब लड़का होता है बॉबी देओल, गांव का स्विमिंग का खंड है, बड़े बाबू की बेटी होती है.
2: हाँ.
3: और विलन इसमें डैनी है.
2: डैनी तो, ओके.
3: हाँ. जी तो काफी अच्छी कास्टिंग थी और स्टोरी वही थी जैसे नॉर्मल स्टैंड पे होती थी. जो प्यार करने वाले आमिर गरीब और उसका बाप डैनी को बोलते थे ये लड़के हटा दो.
2: अच्छा, घोड़े का क्या सीन था इसमें? घोड़ा भी तो था बादल नाम का इसमें.
3: घोड़े का सीन याद नहीं है.
2: मुझे भी याद नहीं है, मुझे तो ये चैट जीपीटी बता रहा था. फिलहाल गाने मुझे याद है एंड ब्रिलियंट एल्बम.
3: उसमें सीन एक्चुअली काफी अच्छे थे जो लोकेशन में थी.
2: आपने किसके साथ देखी थी सनी ये मूवी?
3: नहीं नहीं था कि मैं था.
2: याद था आपको? ऐसे है कि बड़े होके देख के आए थे. हाँ, डैडी को शौक था तभी बेटे को सारी मूवी याद है. फिलहाल वी सेलिब्रेटिंग दिस क्लासिक टुडे. तो आज बरसात को ही याद करते हुए ये गाना सुनते हैं. थैंक यू सो मच सनी, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. जिस क्लाइंट से मिलने गए थे, खरीद ली प्रॉपर्टी? नहीं खरीदी है
3: अभी, चल रहा है बात.
2: बस हो जाएगा, हो जाएगा. दुआएं आपके साथ है.
3: थैंक यू सर.
2: तो देना मुझे पार्टी कमीशन भी आपकी, दुआ भी आपकी, मेरा क्या.
3: जरूर जरूर.
2: चलो जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say goodbye, good night. I will see you tomorrow Wednesday. आते ही दिल में खुशियां सी आ जाती हैं कि बस दो दिन और ये weekend तो बड़ा खास है. I'm very excited to see दर्शन चोपड़ा perform live. मैं Instagram पे उन्हें काफी time से follow कर रही हूँ. So he is amazing. In fact, if you also wanna go and watch him, you enjoy a slow Saturday evening. आपको अच्छे गाने, अच्छा माहौल, अच्छी महफिल पसंद है. Book your tickets now. They are available platinumlist.net पर. जिक्र आपके लिए लेकर आ रहे हैं दर्शन चोपड़ा लाइव एट द जंक्शन दिस सैटरडे. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. फिलहाल आपके पास मौका है इनवाइट्स जीतने का, कपल टिकट जीतने का थ्रू इंस्टाग्राम एज वेल. तो बहुत फायदा है इफ यू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम. पहले फॉलो करो फिर पार्टिसिपेट करो. यू कैन से हाई टू मी, आई एम नांसी टॉकिंग. आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो. Have a great evening. Leaving you with

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mogembo! खुश हुआ
3: मिस्टर अनूप हाय गुड इवनिंग
4: गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग कैसे है
3: मैं ठीक हूँ सर आप कैसे हो
4: मैं बढ़िया बहुत बढ़िया
3: नेम थ्री थिंग्स दैट आर येलो इन कलर
4: बनाना
3: और थिंग्स
4: ऑरेंज एंड
3: ऑरेंज इज येलो इन कलर बहुत बढ़िया अनूप साहब तालियां मेरी तरफ से ऑरेंज इज येलो इन कलर वेरी नाइस थ्री थिंग्स ऑरेंज के अंदर के पार्ट भी सर ऑरेंज ही होते हैं वो येलो नहीं होते हैं आप कहाँ से ये बासी सामान खरीद रहे हो अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे तीन ऐसी चीजें जो आप करते हैं जिससे बीवी बहुत गुस्सा होती है आप पे
4: मोबाइल टॉयलेट में लेके जाना लंबी बात करना ज्यादा वीकेंड का काम करना
3: लंबी बातें करते किससे हो बाथरूम में जाके
4: बाथरूम में नहीं मोबाइल बाथरूम में जाके स्क्रॉलिंग करता हूँ
3: हाँ तो लंबी बातें किससे कर रहे हो आजकल
4: घर वालों के साथ इंडिया में वगैरह
3: घर वाले ही है ना कोई बाहर वाला तो नहीं है ना
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood. जितना भी ट्राई करो भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
1: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni, only on Big One.